प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम।